गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

0: होटल टेलरिंग सेन्टर खादारी एक बुद्ध चोक बाट दूरसंचार जाने बाटो
1: डिजाइनर सुमन ठटाल 9865349444
0: र 0295901155
2: मोर स्टाइल मोर डिजाइन ठटाल टेलर्स।

0: फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना।
1: फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन शक नहीं।
0: अगर तुम मुझे छोड़कर चले गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल।